भरी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज मंगलवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-6560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl। आज का भजन यात्रा का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। भजन यात्रा का प्रोग्राम जो हर सुबह आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। हम आपको ले चलते हैं भजन यात्रा प्रोग्राम में पहला भजन की ओर जो हर सुबह आप सभी सुनने वालों के लिए सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। भजन का बोल है सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। आशा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। मंगलवार का दिन है, भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को वेलकम, स्वागत किया जा रहा है। अनहेल खुद मोर्ख गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। अगला भजन जो पेश किया जा रहा है एक सुंदर सा भजन होगा पंडित गैनेन्द्र शर्मा जी की आवाज में।

शर्मा जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। मंगलवार का दिन है तो चले प्रोग्राम में आपको हम ले चलते हैं ये सुंदर सा भजन की ओर।

सुंदर सा भजन अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों दुनिया की कोने कोने में रेडियो एस बी एस का प्रोग्राम जो है अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए आप सुन सकते हैं। रेडियो एसबीएस का वेबसाइट के जरिए radioSBS.NL के जरिए और दुनिया की कोने कोने में सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर सा भजन की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त भजन यात्रा प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को स्वागत किया जा रहा है। जहां जहां पर भी आप सभी भजन यात्रा प्रोग्राम को सुनते हैं, देश विदेश में भी हमारे बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम को भी सुनते हैं, आप सभी को स्वागत किया जा रहा है। अगला भजन जो प्रोग्राम में होगा सोनू निगम की आवाज में एक सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है।

0: भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्री हनुमान चालीसा। श्री हनुमान चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और वो भी हरि हरन की आवाज में।
1: श्री गुरु चरण सरोज रज

हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गए हरिहरन के आवाज में अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन के साथ भजन यात्रा प्रोग्राम जो है समाप्त किया जा रहा है। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले है, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते है के लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ अनूप जलोटा जी की आवाज में ये सुंदर सा श्री हनुमान जी की आरती बस पेश किया जा रहा है।

एस के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो एस बी एस के जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। चले आपके बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो एस बी एस के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना लाइव। चले आपके बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो एस बी एस के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना लाइव के जरिए ये प्रोग्राम सभी

प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण और अनुराधा पोटवल की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार फिल्म का नाम हम तुम्हारे हैं सनम।

अब उस प्रोग्राम में पेश की गई हम तुम्हारे है सनम फिल्म का नाम अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण के आवाज में ये गाना भी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण और साधना सरगम के आवाज में एक

स्वागत किया जा रहा है। तुरंत यहाँ से हम आपको ले चलेंगे पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर, तकरीबन 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक ये प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में रोजाना पेश किया जा रहा है। पुरानी नगमे पेश करने से पहले सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। हम आपको ले चलते हैं पहला गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। एक गाना होगा किशोर कुमार की आवाज में, जरूर आप सुनते ही रहना।

की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार एक बार फिर से प्रोग्राम में अब की बार ये गाना लेकर। गाना का बोल है मेरी भीगी भीगी सी ये सॉन्ग बाय द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस।

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

जाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आज के प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे एक फिल्म 1952 का रिलीज किया हुआ फिल्म। फिल्म का नाम है बाउजू बाउरा। उसी फिल्म का ये सॉन्ग पेश किया जा रहा है, ये गाना पेश किया जा रहा है।

पेश की गई मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में अभी आपने सुना तू गंगा की मौज में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और चलिए अब की बार लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम कोहिनूर।

0: भास्कर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, दिल में बजी है प्यार की सहनाइया। अब की बार प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की ओर।
1: देखिए क्या ढूंढते हैं,
0: और गाना का बोल है अपनी भी क्या जिंदगी है। मुकेश जी की आवाज में ये गाना।

जिंदगी है, द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में ये खास गाना आज की प्रोग्राम में बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश के बाद हम आपको ले चलेंगे मन्ना डे की ओर, मन्ना डे की आवाज में ये गाना। फिल्म का नाम है आनंद, आनंद फिल्म का गीत मन्ना डे की आवाज में।

आनंद, पुरानी फिल्म आनंद का गीत पेश की गई सॉन्ग बाय मन्ना डे की आवाज में अभी आपने सुना। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 032-65-65-60। मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। किशोर कुमार हम आपको ले चलते हैं फिल्म अभिमान की ओर।

उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुन वालों की सेवा में सोमवार किशोर कुमार, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और एक काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुन वालों की सेवा में लता जी की आवाज में।

इसकर की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे के गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चले प्रोग्राम में अबकी बार तलत महमूद और लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। चमका चमका सुबह का तारा,

0: लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज के प्रोग्राम में द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना, फिल्म का नाम सुजाता।
1: दोनों बातें एक ही आवाज में ऐसी खूबसूरती से समाती हैं और जो कुछ भी गाते हैं ऐसी सरलता से गा जाते हैं जैसे कुछ भी प्रयास ना करना पड़ा। यूं तो इन्होंने बहुत से गीत गाए हैं लेकिन ढूंढ लाया हूं ये गीत मैं तेरे लिए।

गाना जो पेश की गए पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में अभी आपने सुना। चलिए एक और खूबसूरत गाना मोहम्मद रफी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

रेडियो वेव्स भी इसके जरिए मन्ना डे की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। चलिए एक गीत पेश किया जा रहा है और वो भी द माइटी मुकेश की आवाज में, माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो वेज में इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में अपने हुए पर आए द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुखीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम अपना पन। किशोर कुमार एंड सुलक्षणा पंडित की आवाज में ये गाना।

रेडियो SBS के जरिए किशोर कुमार और अनुराधा पोटवाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में किशोर और अनुराधा पोटवाल के बाद मोहम्मद रफी प्रोग्राम में फिल्म का नाम है मरिया।

ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म कुदरत का गीत अब की बार पेश किया जा रहा है सॉन्ग बाय किशोर कुमार।

पन्ना की तमन्ना है कि ये हीरा मुझे मिल जाए, खास गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। अभी अभी स्टूडियो की ओर तार किया है आउफ ऑन द राइन शहर से ग्रेस, ग्रेस भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। ग्रेस आपको भी अनहेल खुद मोर्ख अनमोये दाग, एंड एक सौ से ब्लाइव लेकर लाउस्ट्रे नार रेडियो SBS, योर फेवरेट रेडियो स्टेशन।

और रेडियो SBS के जरिए गाना बस पेश हुआ है ना कजरे की धार। असरों मीठे की ये गाना आज की सुबह की प्रोग्राम में आपने सुना और काफी पसंद किया है। हमारे सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, सभी को शुक्रिया धन्यवाद। सभी जो ऐप कर रहे हैं प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना।

चिलबिल सितारों का आंगन होगा। गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए खूबसूरत नगमे बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। बहुत से रिएक्शंस बस आते रहते हैं रेडियो SBS का ऐप पर, सुनने वालों भी तार कर रहे हैं स्टूडियो की ओर। सभी को शुक्रिया धन्यवाद कहा जा रहा है कि आप सभी इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं।

खास गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए वेबसाइट होता है radio sbs.nl। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं।

0: ओरिजिनल गाया हुआ गाना। अब की बार प्रोग्राम में ये गाना पेश की गई नई आवाज में, नई संगीत में, और आसरो भी थे सुनकर काफी पसंद किया है। वाडिंग्स फेन शहर में भी हमारा प्रोग्राम डे या बे प्लस रेडियो के जरिए सुनाई देता है, और वाडिंग्स फेन शहर में राम हमारा प्रोग्राम भी फॉलो कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स दिया है। हमारा रेडियो SBS का ऐप पर शुक्रिया भाई राम, आपको शुभ दिन पेश किया जा रहा है, और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना।
1: धरती का प्यार पले,
0: और खास तौर पर लिम्बर्ग से तार किया है इरेना भी हमारा प्रोग्राम से मजा लेते हैं, शुक्रिया आपकी तार के लिए, और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। आज का मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम है, और इस मौसम में बहुत सी सुनने वालों है जो प्रोग्राम रेडियो SBS का बस सुनते हैं, जो सालों से आपके लिए बस पेश किया जा रहा है। एनन फेर तक यार, आने वाले महीना में एनन फेर तक यार होगा, जबकि यूट्रेक्ट शहर से रेडियो SBS का प्रोग्राम एक ही नाम के साथ, रेडियो SBS नाम के साथ ये प्रोग्राम जो पेश किया जा रहा है।

SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सब ही और सब ही सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, एक बार फिर से आपको याद दिलाया जा रहा है, बार बार आपको याद दिलाया जा रहा है ताकि आप अपना अखेंडा में नोट करें। इस साल मिलन समर फेस्टिवल 21, 22 एंड 23 अगस्त होने वाले हैं और वो भी सौड पार्क डेन हाग शहर में। फॉर द 42nd केयर मिलन होगा और वो भी सौड पार्क डेन हाग शहर के अंदर में 21, 22 एंड 23 अगस्त। आप हर एक को खबर किया जा रहा है कि 21 अगस्त लाइव ऑन स्टेज रहेंगे वही मशहूर गाने वाला फ्रॉम त्रिनिदाद रेमोन राम नारायण, अपना फुल बैंड लेकर के दिले नादान यहाँ मिलन सौड पार्क में लाइव ऑन स्टेज रहेंगे। सुनने वालों, आपको भी खबर किया जा रहा है क्राम फरहूर के लिए स्टैंड आप भाड़ा पर किराए पर लेना चाहेंगे तो मिलन समर फेस्टिवल .nl वेबसाइट पर आप जाइए। उसी वेबसाइट की जरिए सभी इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है और खास तौर पर अपना टिकट जो है जरूर आप जल्द से जल्द आप खरीदिए। मिलन समर फेस्टिवल इस साल 21, 22 एंड 23 अगस्त। मेर इन्फॉर्मेशन मिलन समर फेस्टिवल .nl। Vrijdag 21 augustus live Raymond Ramnarayan.

गाना जो प्रोग्राम में पेश किए गए आप सब ही सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए तुझको पुकारे मेरा प्यार। एक गाना और होगा, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे रिक्लाम न्यूज मौसमी समाचार की ओर एंड नथु लुक फॉर किड्स इन्फॉर्मेशन।

Sanu Jeki Avasme. Sudvalu Radio SBS ka website radiosbs.nl usi website ki zariye apna mobile telephone tablet iPad computer ki zariye hamara program ko aap sun sakte hain aur sabhi internet radio ki zariye aur Sudvalu bas hamesha rozana Radio SBS ka program ko follow kar rahe hain अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में ये प्रोग्राम जो आप सभी के लिए हमेशा पेश किया जा रहा है हमारा फुल डिजिटल स्टूडियो से।

रेडियो SBS के जरिए जावेद अली की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। तो चले ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। आपके बार जो पेश किया जा रहा है

खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए भी आपने सुना। बहुत सी सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं, तो चले प्रोग्राम में आपकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है अलका एंड उदित नारायण की आवाज में।

भी आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए क्षेत्र तरह से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का। और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। बाबू सुप्रियो प्रोग्राम में

0: काबुल सुब्रियो की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में कर।

0: इतना
1: पीस की गए मेरा इंतजार करना। अरमान मलिक की आवाज में आई फिल्म खुदा हाफिज, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अगली बार ये गाना की ओर। गाना कबूल है शुक्रिया। सड़क नंबर 2 फिल्म का नाम

चलिए कैनबस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। चले प्रोग्राम में आपकी बार ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम जो है जरूर सुनते ही रहना।

और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए और जिस तरह से भी आप चाहे हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और वो भी इंटरनेट के सहारे। और इसी तरह से भी बहुत सी सुनने वालों दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं।

कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई मेरे मेहरबान फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में। उदित नारायण और अनुराधा।

सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम इश्क है तुमसे, इश्क है तुमसे फिल्म का नाम, गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई। खूबसूरत नगमे आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, फिल्म नाराज।

फिल्म का नाम। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-6060। इसी तार की नंबर पर अपना हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं फरमाइशी के बारे में, आपकी तमाम खबरें, तमाम रिक्लाम के बारे में।

सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल, टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर की जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चले लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है जेवल दीव।

सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना किशोर कुमार की आवाज में आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम आपकी कसम। आपकी कसम फिल्म का नाम है किशोर कुमार की आवाज में। ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

कुमार, किशोर कुमार की आवाज में द मैन विद एवरग्रीन वॉइस, किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आपकी कसम, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आज की प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम तीसरा

आज की ये प्रोग्राम भी जो पीस की गई है। चलिए एक फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं, जिस फिल्म का नाम है राजकुमार। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश होगा रेडियो SBS का आज की इस खास प्रोग्राम में। सुनने वालों, स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है, तार का नंबर है 030-2266-6611। शहर उत्रेख हॉलैंड से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। मरहूम मोहम्मद रफी।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम भी सुनते हैं, अपना अपना रिएक्शंस भी देते हैं। चले किशोर एन आशा जी की ओर हम आपको ले चलते हैं, एक काफी प्यार भरी गाना आपकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

बस दीवानी है, महल फिल्म का नाम, गाना जो पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। किशोर कुमार एंड आशा के बाद मुकेश और लता जी की आवाज में आज के प्रोग्राम में ये खास गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम मेरे हम सफर, मुकेश और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन।

इस गाना का बोल किसी राह पे किसी मोड़ पे, फिल्म का नाम मेरे हम सफर। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अब की बार एक काफी खूबसूरत गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, मरहूम मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में।

सफाई मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी एंड

0: रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है संगीत भरी स्टेशन यूट्रेक्ट शहर से हॉलैंड देश से। ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।
1: तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खत्म।

मुलाकात मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज पे ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरों मीठे ये तमाम पुरानी नगमे आप सुनते हैं और काफी पसंद करते हैं। मुकेश और लता जी की आवाज में अब की बार हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम है संगम। संगम फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशुली रामलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आर जे अंशुली रामलाल die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met de studio naar 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u bellen met 032-65-65-60. En beginnen we meteen met het eerste liedje van vandaag en dat is...

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं।
2: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। इसके सॉन्ग दो लता मंगेशकर एन कॉम्ट आउट द फिल्म वक्त। गाँव दा फेदर मैट आउट द फिल्म गुंजन सक्सेना। गजाओं दो रेखा भारतवाज कॉम दोरी टूट गईया।

मेरे चंदा मेरे नन्हे, आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आखिरी खत से। और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में। चौधवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये बेहतरीन गाना आप सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम, मेरी नींदें मेरे सारे सपने, ले चुन लो मुझको भी साथ अपने, तुम न मारो तो तुमको कसम, was uit de film Chori Chori en is gezongen door Elka Yachnik en Babu Supriyo. Gaan we dan verder met uit de film Chehre, Rang Darya.

जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। इसका सॉन्ग अदूर अमित मिश्रा एंड अभिजीत एंक्वाम एर द फिल्म जवाने जाने मन एंड एर द फिल्म अभिमान कॉम्थ सॉन्ग अदूर लता मंगेशकर तेरी बिंदिया रे।

फिल्म अभिलाषा से आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में वादियां मेरा दामन, और अब आप सुनिए लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में फिल्म हम तुम पे मरते हैं से। ये एक फिल्म है उर्मिला मातोंडकर और गोविंदा का, और वो भी टाइटल सॉन्ग गाना है हम आप में कुछ हो गया, हम तुम पे मरते हैं।

इंदु की जवानी है फिल्म का नाम और अभिनेत्री है कियारा अडवाणी। गाने के बोल हैं हीले टूट गए और गाने वाले हैं बादशाह और आस्था गिल। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है मुकेश दा की आवाज़ में। फिल्म छोटी बहन से आप सुनिए जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल।

0: इसे मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी

0: गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म, शेखर।
2: मेरे पास वक्त नहीं है तुम बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
3: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

कसम से सनम प्यार तुमसे करते थे करते हैं हम उम्र भर करते रहेंगे इस अर्ध फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं dit prachtig liedje is gezongen door Kumar Sanu en Anuradha Padmanabhan. Het volgende liedje is gezongen door Abhay en Shreya Ghoshal uit de film Panipat komt Sapna hai sach hai.

हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की सारी रस्में हम तोड़ चले। इस अर्ध फिल्म अजनबी खुशांदोर आरडी बर्मन लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार वासुदेव लीजे फिया रेडियो SBS इन इत प्रोग्रामा गीतों के लहर। एंड अर्ध फिल्म बागी 3 कम्स खुशांदोर शान एंड रोचाक तुझे रब माना है।

ये लड़की बड़े ड्रामे बाज है, बस अर्ध फिल्म सूरज पे मंगल भारी है, एंड अर्ध फिल्म लव मैरिज कम्स हो जाऊँ तो गीता दत्त करीब आओ ना।

0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।